पर असी नाम दा स्वाद छड़ के रसा कसा विच फस गए, अहंकार विच फस के दुख पाए। ए दुख तेरे भेजे हुए नहीं, ए साडे अपने ही सहेड़े।

तरम में श्रेष्ठ तरम, हर को नाम जप निर्मल कर्म, छगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल क्रिया, छगल बाणी में अमृत बाणी, हर को जस सुन रसन बखानी, मैं तो कर्म करने सी सिमरन वाली, मैं कुछ कीता भी सही रिधियां सिद्धियां नू प्राप्त करके हंकार दी पंड होर वड्डी कर ली। धन गुरु नानक पातशाह संसार नू उतार दे होए जदों वली कंधारी जेड़ा बड़े अहंकार दे नाल चिल्ले कट्टे तपस्या कीती, रिधियां सिद्धियां प्राप्त कीतियां ते अपने जोर दे दाल पानी बंद कीती बैठे, जेड़ा मेरा चेदा होवे उसनू ए पानी मिल सकदा है। धन गुरु नानक पातशाह क्योंकि जगत जलंदे नू थारन जो आए सन, जा पहुंचे वेख लैंदे सन भई किथे सृष्टि नू दुख दिता जा रहा, किथे रब दी साजी होई सृष्टि दुखी है ते फिर आप जाके सुख वंडदे सन। पापी नू मारिया नहीं, पापी नू तार देना, जिथे भी पुन्ना दा गलत इस्तेमाल हो रहा सी पुन्ना नू पुन्ना वाले पासे जोड़ दिता। वदी कंधारी कर्म कांड करके पत्थर ते बैठ के बड़िया रिधियां सिद्धियां विखांदियां विखांदियां पत्थर ते बैठा होया, आप भी पत्थर हो चुका सी। धन गुरु नानक पातशाह जी ने मरदाने नू भेजिया, जा मरदानिया पानी लैके आ। मरदाना एक वेरी गया, दूजी वेरी गया, तीजी वेरी गया, बड़े अहंकार दे नाल कहन लगा जे इतना ही तेरा गुरु शक्तिवान है ता आप क्यों नहीं कढ लैंदा पानी, तू मुसलमान होके काफर दी संगत कर रहा, कुछ अकल कर। ते मैं काफर नू पानी नहीं दे सकदा। धन गुरु नानक पातशाह अच्छा अहंकार दूर जो करना है। मर्दानिया आ दो पत्थर पुट सत करतार सत करतार नाम जपदिया, जदों ए दो पत्थर चुके तां विचों अमृत रूपी चश्मा फुटिया। उच्चारण करो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। हुण जितना पानी जितना जल एक काबू विच रख के बैठा सी ना वली कंधारी, सारा दा सारा तले आ गया, उपर जल सुक गया। गुस्से विच आके लोहा लाखा होया होया मेरिया शक्तियां दा इसनू पता नहीं, मैं की कर सकदा हां, आ मैं हुणे दसदा हां। अपनी शक्ति दे नाल एक वड्डा पत्थर रोड़िया पहाड़ी तो। मर्दाना कहन लगा महाराज कृपा करो मेहर करो, इस पौजल तो बचना बड़ा औखा है। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे मर्दानिया तू करतार नू चेते रख, जलाल विच रहो। करतार दे नाल जेड़े जुड़े रहिंदे हन ना उन्हां दा कोई वाल विंगा नहीं कर सकदा। एडा पर्वत दा पर्वत रुड़ के आ रहा है ते धन गुरु नानक पातशाह जी ने बख्शिश कीती कृपा कीती कोट ब्रह्मंडा दे बादे सब। जां आपने नदर कीती तां ए पत्थर नेड़े ही आके जदों रुकिया तां आपने झट इस पत्थर ते पंजा ला दिता ते इस तरह लग्या जिवें मोम दे विच पंजा खुब जांदा। सारा जगत जो वली कंधारी तो दुखी सी धन गुरु नानक पातशाह जी दे चरणां विच आ जुड़िया। हुण वली कंधारी सोचदा है भई मैं तां कखों होला हो गया, एडियां शक्तियां दा मालक सां पर मेरी तो कोई भी वाह ना चली। हो सकदा ए मेरे अहंकार नू दूर करन लई आया होवे, आप खुदा आया होवे, मेरी रिधियां सिद्धियां अहंकार ते क्योंकि पुन्ना ते रिझदा है रब। हो सकदा मैनू तारन लई मेरियां रिधियां सिद्धियां मेरे अहंकार दे सदके मैनू तारन आया होवे, मन नीवा हो गया।
ਤੇ ਫਿਰ ਤਲੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮਸਤਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਦਮ ਬੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹ ਸਾਈ ਦਿਆ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ ਹੁੰਦਿਆ ਹੁੰਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਮੇਟਣ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਪਰ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਬੰਦ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੀ ਖੁਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਖੁਦੀ ਮਿਟੀ ਤਬ ਸੁਖ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਖੁਦੀ ਮਿਟ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਬ ਲੋ ਪੋਟ ਉਠਾਈ ਚੱਲੇ ਤਬ ਤੱਕ ਦਾਮ ਭਰੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਡ ਛਿੜਤੇ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਾਨ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੁੰਗੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੰਘ ਜਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ, ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ। ਉਹ ਪੰਡ ਅਹੰਕਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਬ ਤੱਕ ਪੋਟ ਉਠਾਈ ਚੱਲੇ ਤਬ ਤੱਕ ਦਾਮ ਭਰੇ। ਪੋਟ ਡਾਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਦੇ। ਪੋਟ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੋ।

बिना सिमरन तो तेरा जीवन किसे भी लेखे नहीं। सेवा और सिमरन तो बिना इस तरह जीवन है कुआर कन्या जैसे करत सिंगारा क्यों रलिया माने बाज बतारा। भाई साहब गुरदास जी सिख पंथ दे वेद व्यास कहंदे हन त्रिग सेवा बिन हाथ पैर होर निफल करने।

तू सुख प्रजा दी सेवा करके भुखे नू भोजन देना, लोड़ अनुसार कपड़ा लीड़ा गरीबां नू देना, उना दियां लोड़ां पूरियां करनियां। जे ए सारा धन तू नाल ले जाना चाहुंदा है ना, ता संसार विच जितने भी गरीब गुरबा है सब

जीवन आनंदमय हो गया, जिस जीवन कोई डर सी ना भाई कोई धन चुरा ना लवे, आज सुख दी नींद सौंदा है, हर वेले सिमरन करदा है। ते धन गुरु नानक पातशाह जी नू आके कह लगा, महाराज हुण कोई होर सेवा बख्शो। ता गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने सूई दिती, आख्या भाई दुनी चंद आ साडी सूई रख लै।

ऐसे सबे करतारा। चौपाई दी शुरुआत हमरे करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। गुरु नानक नाम लेवा दुनिया दे किसी कोने भी बैठे हो, जद भी पंजा बाणियां दा पाठ करते हैं ता चौपाई साहब दा पाठ भी जरूर करते हैं। औखे वेले भी कोई पीड़ बने ता संगतां बड़े प्यार दे नाल चौपाई साहब दा पाठ कर दियां हैं, क्योंकि गुरसिख दे मन दी जिथे ए लालसा हुंदी है पाठ करन दी, उथे भरोसा भी है। इसे वास्ते गुरसिख दोनों वक्त होर बाणियां दे नाल चौपाई साहब दा पाठ भी करते हैं, ते नाले कहंदे हैं तो मैं छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम दे पाऊं। तो जो चाहिदा है वो तेरे कोलो मिल सकदा है, इस करके तेरे सिवा मैं होर

अपनी पोती दे नाल रात दे हनेरे विच बरसात विच तुरिया जा रहे है। जंगल खत्म होया, कुछ पठान बैठे नजर आए, अग बल रही है। ए दादा ते पोती उन्हां पठाणा नूं कहण लगे, रब तुहाडा भला करे, साडे कपड़े गिले हन, कुछ समा अग सेक लैण दिओ। उन्हां पठाणा ने इस बाबे नूं देखिया जिहड़ा अखां तों अन्ना है, मन विच बुरा ख्याल आया, ए बाबा की साड़ा बिगाड़ सकदा है। ए सोच के उस लड़की नूं अपनी कैद विच पाया, पर वो लड़की किसे तरह कैद विचों भज निकली अपने बाबे दे नाल। फिर पठाना ने घेरा पाया, इन्हां नूं मारन लगे। इस बच्ची ने हाथ जोड़ के कलगियां वाले पातशाह दे चरणां विच अरदास कीती, हमरी करो हाथ दी रक्षा। अरदास कीती, तोड़ उड़ दी नजर आई, उसे तोड़ विचों शां शां दी आवाज करदा एक तीर आया। उस पठान दे लगा जिहड़ा बाबे नूं मारन लगा सी। देखदिया देखदिया धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सिखां समेत आ पहुंचे हैं। उन्हां दोनां दी रक्षा कीती। उस बाबे ने उस बच्ची ने सतगुरां दे चरणां ते मत्था टेकिया। इस बच्ची का रोना देख के साहब जी कहन लगे, बेटा रो ना, जद भी कोई प्यार ना गुरु का ओट आसरा लैंदा है, ते गुरु हर वेले उन्हां दी रखिया करदा है, तां ते आओ पाई आपां वी होर आसरे छड़ के इक परमेश्वर दा

पानां पान देवां दे उपमा महा कलगीधर पातशाह कहिंदे ने अकाल पुरख तू राजयां दा राजा तू सूरजां दा सूरज तू देवतियां दा देवता तेरी उपमा बड़ी महान है।

ऐसी उड़ारी मारी कि मानो दुनिया पलट गई। एक बड़ा ऊंचा पहाड़ है, चार चुफेरे बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। एक छोटा जिया पानी दा तल है, कुछ महात्मा बैठे ने, कीर्तन शुरू होया। एक बड़ा ही तेजस्वी पुरुष इन्हां सारियां दे विचकार बैठा है। कीर्तन ऐसा शुरू होया, उस कीर्तन दे विच सारे गवाच गए ने। सुरत ने उड़ारी मारी एक अनुभव नगर जा पहुंचे। ऐसा नगर जिदे बड़े बड़े ऊंचे मकान ने, बड़े बड़े वटे महल बने हुए ने, पर ओ महल इटा गारे दे नहीं, हीरे जवाहरातां दे नालों भी सूक्ष्म शहद बने हुए ने। उस शहर नू बेगम पुरा भी कहंदे ने, जिथे गम कोई नहीं। तेजस्वी पुरुष दे नाल असी भी इस शहर के अंदर दाखिल होए हां। इस शहर बारे धन गुरु अर्जुन साहब अपने

0: को समझायो इम कह के लोक पठायो।
1: मन नहीं मन रहा पर अकाल पुरख नहीं समझाया ता दुष्ट दमन जी कहंदे नहीं संसार विच अंधेरा बड़ा है अज्ञान दा बचन कीता ऐ प्यारे मैं तेरे विच चानना बन के रवांगा जिथे तू जाएगा अंधेरा दूर भज जाएगा ते नाले मैं तेनू अपना पुत्र बना के संसार विच भेज

दुष्ट दमन जी उस बेबान विच बैठे ने, वो बेबान वापस इस अनुभव नगर बेगमपुरा शहर तो तुरे आ, जिन्हों आपा सचखंड भी कहने, जिथों तुरे आ सी हेमकुंट नाम दे पर्वत दे असी वापस आए, इथे आराम कीता है। इथो ए बेबान तुरिया किथे जा पहुंचे है? गुरु तेग बहादुर साहब दे महल, माता गुजरी जी दे दीवान खाने, अमृत वेले आत्मक मंडला वाले जीव स्वागत वास्ते पहला ही हाजिर सन, आरती उतारी जा रही, आनंद मंगल पढ़े जा रहे ने, आत्मक मंडला वाले खुश हो रहे ने। अचानक प्रकाश होया, हर पासे बनास्पति खिड़ गई, मानो अज दुनिया दा पार हरण वास्ते एक होर जोत प्रगट हो रही है। कुछ घड़िया बाद हर पासे खबर फैल गई कि माता गुजरी जी के ग्रह एक सुंदर बालक ने जन्म लिया, ते कलगी तरपातशाह आप लिखते ने कि साडा प्रकाश पटना साहब की धरती से होया। मुरपित पूर

हेमकुंड पर्वत जिथे अज हजारा संगता दर्शन करने वास्ते जांदियां ने, सचमुच मन सच्चा प्यार सच्चा ते कलगीधर पातशाह फिर आप लैण वास्ते अगू आंदा है, अपनी गल दे नाल लगा लैंदा है अपने चरणा दे विच, जगह दे दिंदा है। आओ भाई उस दुष्ट दमन दे तपो स्थान दे आपां भी दर्शन करिए, कीर्तन करिए सुनिए, हो सकता है कीर्तन सुनदे हैं साड़ी भी सुरत उडारी मारे ते उस शहर दे विच सानू भी जगह मिल जावे, साड़ा आया सफला हो जावे।

सियो रंग लाए, गुर कृपाल होए दुख जाए। Embrace love for Guru's Bani. When the Guru shows mercy, pain is destroyed.

जी दे अहले दुआले। कोई छे छे कर्म सत सत कर्म साधु ही साधु खलोते है, पिछे पिछे सेवक है साधु अगे अगे है। ते बाबा जी का जिहड़ा भवान है वो उन्हां दा चुकिया होया है। जिस वेले उस समय याद आता उस वेले ऐ लगता है भी किन्नी धरती हरियाबली है, से संत पे हरियाबले जिन्ना मेरा सतगुर देखा जाए। अखा उन्होंने भी जल जिहड़ा सी वह वगदा सी। भागां वाले उस वेले संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज उन्होंने कहा भी कहना तो सौखा भाई रोवो ना, ये तो अपने घर चलिया पर रोन बंद नहीं हुंदा, मैं की करां। किसी का भी उस वेले जिहड़ा सी मन ये नहीं सी कहिंदा भी मैं ना रोवां, जी करदा सी उची उची भुवां मारां। किहो जिहा प्यार दा समां सी, ऐसे सतगुरु जी महाराज फरमाउंदे हन

गुरु नानक दा नाम जिन्हां ने भी रचना ते लियांदा फिर ओ जन्म मरण तो रहत हो गए से फिर गर्भाश न भरिया रे तारिया जहान लेहा अभमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुद नू तन के हा तिन जम नेर ना आया जिसने भी प्यार और सिदक दे नाल एक वेरा प्यार नाल कह दिता तन गुरु नानक जमदूत नेड़े नहीं आ सके गुरु नानक सच्चे पातशाह संसार नू तारदे होए एक जंगल विचों विचर रहे हन एक छोटा जिहा पिंड आया जिन्हां दा नेता प्रति ए कर्म सी कोई भी अभ्यागत कोई भी मुसाफिर उथों लंघ जावे पहला कतल करना फिर उस दी तलाशी लैनी अज गुरु नानक सच्चे पातशाह घट घट के अंतर की जानत ओ देख रहे सन भाई इना कोलों सृष्टि नू बड़ा दुख पहुंच रहा उन्हां नू तारन लई हजूर आप उस जंगल विचों विचरदे होए पिंड विच आ रुके चोरां ने आके घेर लिया हजूर कहन लगे भाई की चाहुंदे हो के जो कुछ है इत्थे रख दिओ पर असी पहला कतल करदे हां ते बाद विच तलाशी लैंदे हां गुरु नानक सच्चे पातशाह ने आख्या जो कुछ साडे कोल है वो तुहानू दे देंदे हां ते सानू जान दिओ आख्या ए साडा असूल ही नहीं चाहे कुछ भी ना निकले जिस मनुख नू असी वेख लिया ना जेड़ा इत्थों लंघ गया वो जीउंदा नहीं जा सकिया उच्चारण करो श्री वाहिगुरु गुरु नानक सच्चे पातशाह कहन लगे फिर तुसी कतल तो कर ही देना पर एक साड़ी भी शर्त है साड़ियां देहां रुलदियां ना रहन थोड़ियां लकड़ियां कठियां करके ते सानू वायदा दियो भाई तुसी संस्कार कर दोगे आख्या लकड़ा कित्थों कठियां करिए के हो सकदियां हन ते जे लकड़ा कठियां कर लिया अग कित्थों लियावांगे ता एक चिता बल रही सी गुरु नानक सच्चे पातशाह ने उस चिता वल उंगली कर दिती भाई ओ अग बल रही है उथों अग्नि ले आओ ते फिर जो मर्जी है कर लेना कुछ चोर गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे पास खलो गए भाई चले ही ना जान ते कुछ अग्नि लैन ले चले गए जाके की वेखदे हन जेड़ा मृतक शरीर जल रहा सी ना उस शरीर नू लैन वास्ते पहला ता जम गण आए हन उसकी आत्मा नू बड़ा मार रहे सन ते फिर उसी वेले राम गण आ गए फुलां दे विमान सज के आ गए ते आपस विच चर्चा कर रहे सन ओ राम गण कहन लगे भाई इस आत्मा नू हुण असी लै जाना है जमगण कहंदे हन इसने सारी जिंदगी कोई चंगा कर्म नहीं कीता कदी इसदे कदम सतसंगत वल नहीं गए इन्हां नेत्रां नाल कदी इसने गुरु दा दर्शन नहीं कीता अपने इष्ट अगे कदी शीश नहीं चुकाया इह तां कुंभी नरक दा भागी है इनू तुसी किवें लै जा सकदे हो तां रामगणा ने आख्या तैनूं पता नहीं सृष्टि दे मालक लोक परलोक दे मालक गुरु नानक सच्चे पातशाह ओ खड़ोते हन ते उना ने इस चिता वल उंगली कर दिती है इसलिए हुण नरकां विच नहीं जाएगा स्वर्ग विच जाएगा चोरां ने जदों ये गल सुनी तां अखां भर आईयां कीते होए पाप सामने आ गए ते आके चरणां ते डिग पए नालदियां नूं भी दस्या भाई जेड़ा प्रभु साडे पुन्नां ते तपस्या ते चंगे कर्म करके नहीं रीझदा अज ओ ईश्वर साडे पापा ते रीझ के सानू तारन लई आ गया सारे ने चरण पकड़े ते हजूर दे
ڈر تو یہ دات منگی بھائی غریب نواز سانو سچ دا راہ دسو تے حضور نے پھر کی دسیا آخیا کرت کرنی ونڈ کے چھکنا اور پھر دونوں ٹائم جپنا سری واہ گرو اے ہے گرو نانک جن سنیا

मरदाने में तकिया किया भाई तू कल आ रहा है इन्हें किया था कल का मीरा में तो पाई फिर दर्द है आज कितनी मरती है तो इतनिया खुशबुआ कि कृपा करो कहने लगा मरदाने आप ये सारी कृपा मेरे घर गुरु नानक की भक्त अगर कहने लगे मैं मरदाने सच में बाबा ये जड़ी चीज के रीते हो एडी वी जात हजू कह लगे मदानिया एदिया प्यार वाली होर कि मेरे क्या है

क्यों ना व्यस्त करेगा, वो जरूर वड्याई करेगा, गुरु दा जस करेगा, गुरु दा जय जयकार करेगा। भी जिस गुरु ने मैनू बख्श लिया, बख्शा भी ऐसे पापी नू, गुनाहगार नू, इतने गुनाह हन, पाप हन, किन्ने कहन जेता समुंद सागर नीर भरिया, देते औगण हमारे, इतने औगण मेरे विच हन, ते इतने औगण हार नू गुरु ने बख्श लिया, गुरु ने मेरे ते बख्श कर दिती है, ते क्यों ना जस करा। तन है वो गुरसिख माई भाई, जो गुरु नानक पातशाह दा नाम लेंदे हन, जो तन गुरु नानक सच्चे पातशाह दी बड़ियाई करदे हन, जस करदे हन नाम लईए सतगुरु नानक के, दुख दर्द रोग मिटे सो भयानक, नाम लगे सतगुर नानक के, सुख संपत्ति भोग मिले सो अचानक, नाम लगे सतगुर नानक के, जग काग चुगे मिल मोती माणक, सारी संगत मिलके आख हो धन धन गुरु बाबा नानक। देर न लांदे सब मिट जांदे, जन्म जन्म दे पाप भयानक, सब सुख आन नवास करेंदे, दूर होन सब दुख अचानक, नेड़े फेर न आवन उस दे, जन्म मरण जो है दुख दानक, जो भी सच्चा प्रेम धार के एक बार कहे धन श्री गुरु नानक। गुरु नानक साहब का नाम ऐसा है नरकां तो बचाउण वाला, दुनिया तो न्यारा। बाबा जी ने बचन करने के गुरु नानक साहब दा नाम नानक, ना अकण वाला ना थकण वाला। गुरु नानक दा नाम नरकां तो बचाउण वाला, दुनिया तो न्यारा नाम है। ऐसा पवित्र नाम गुरु नानक साहब दा, जिन्हां ने भी गुरु नानक साहब दी वड्याई सिफत कीती है, सच्चे दिलों एक बार भी गुरु नानक साहब दा नाम लिया है ना, मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट अपराधी तरिया रे, गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गुरवासना तरिया रे। इतना महान ते पवित्र गुरु नानक पातशाह दा नाम है, नाम दी दात लेके नाम ही जपाउण वास्ते आए सी। फिर किन्ने उन्हां ने तारे हन, तारियां दी तां गिनती कर ली है साइंसदाना ने, भी आकाश विच किन्ने तारे हन, पर जेड़े गुरु नानक साहब दे नाम ने तारे ने उन्हां दी गिनती कोई नहीं कर सकदा, भी किन्ने तारे हन, किन्ने हुण तर रहे हन, गाहां नूं किन्नियां कने तरना है। ऐसा पवित्र नाम है गुरु नानक साहब दा, ते क्यों ना गुरसिख धन गुरु नानक सच्चे पातशाह दी वड्याई करे, जस करे। दुनिया विच सारे ही पीर पकंबर अवतार महापुरख सत्कार योग हन, गुण तां बेअंत हन, कोई एक गुण है, अनेका ही गुण हन, हमरी जेहवा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह, हम क्यों कर जपै आणे हर तुम बड़ अगम अगाह, एक दू जीवों लख होहे, लख हो वह लख वीस, लख लख गेड़ा आखिया एक नाम जगदीश।

0: सत्य तेरे खंड सत्य ब्रह्मन सत्य तेरे नो सत्य आकार सत्य तेरे करण सब विचार सत्य तेरे अमर सत्य दीवान सत्य तेरा हुक्म सत्य फरमान सत्य तेरा कर्म सच्चा निशान सत्य तो दाखिला करो सच्चे सब तान सच्चे सब जू
1: सच्ची तेरी सिद्ध सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे बाजा नानक सच्चे सच्ची जो मर जम में सो कट कट महला पहला
2: वड्डी वड़े जा वड्डा ना वड्डी वड़े सच्चिया वड्डी वड़े निश्चल था वड्डी वड़े जाने ला वड्डी वड़े बिरसा पाओ वड्डी वड़े पुछंदा वड्डी वड़े जा पिया नानक और नक तुझे की तक ना सरुजा
0: महला तू जा एक सच्ची की एक उठड़ी सच्ची कब जबा एक नाम सुमाल एक नाम कुमे करीबनास एक नाम पाने कडले एक नाम आया बिचनवास ए पी आखन जापे किशन रा नानक गुण गुण जाने जाको।

0: सतकर्ता श्लोक मला पहला बिस्मार नाथ बिस्मार वेद बिस्मार जी बिस्मार पे बिस्मार रू बिस्मार रंग बिस्मार नागे फिरे जन बिस्मार पौन बिस्मार पानी बिस्मार अग्नि खीरे बनाने बिस्मार तरती बिस्मार खाने बिस्मार साधके प्राण
1: बिस्मार स्नुक बिस्मार बिरुक बिस्मार पुख बिस्मार पो बिस्मार शिफ्ट बिस्मार सला बिस्मार औदल बिस्मार दरा बिस्मार नेड़े बिस्मार दूर बिस्मार देख हादरा दू देख बड़ान रिया बिस्मार नानक बुद्धन पूरे
2: महला पहला कुछ से कुछ सुनिए कुछ बात।